कुछ पछतावा कीता कि हे निरंकार मैं संसार ते आके जो कुछ करना सी ओ कीता नहीं। मैं मोह माया दी नींदर विच सुता रहा, मेरा सौ जागे हौन इस बार सोवा। इस संसार दे पंज झगड़िया विच पै के मैं सारा जीवन अपना एवें व्यर्थ गवा लिया। सेजे रमत नैन नहीं पेखो। हे परिपूर्ण परमात्मा, तू तो मेरे हिरदे रूपी शेज ते जाग रहे, पर मैं मोह माया दी नींदर विच सुता ही रहा। कदे तैनु वेखण दा जतन ना कीता, कदे तेरे चरणां विच जुड़ के ओ महान रस ना मान सकिया, जिस नाल मेरा लोक परलोक सौरदा सी। इसलिए मेरी मत बहुरी

पंच को झगड़ा झगड़त जन्म गवाया, संसार वल निगाह मार के वेखिए, बस इना पंजा झगड़िया विच ही मनुख सवेर तो शाम तक और रात तो सवेर तक इना ही झगड़िया विच पिया होया। इसनू परमेश्वर दा सिमरन भोली गया। इसे लई गुरु तेग बहादुर साहब कहिंदे हन, अब मैं कौन उपाओ करूं, जे बिद मन को संसा चूके पवनिद पार परों, जन्म पाए किश पलो ना कीनो ताते अधिक डरो। इसलिए कबीर जी कहिंदे हन, भाई सुख तो उन्हां ही पाया है जिन्हों ने जपया श्री वाहिगुरु। तो इसलिए झूठी माया सब जग बांधिया, झूठी माया ने तो सारे जग नू बनिया, पर रब दे प्यारे अमृत वेले जाग के नाम जपदे हन, सेवा सिमरन करदे हन, अपना जीवन सफल करदे हन। सेजे रमत नैन नहीं पेखो, ए दुख कांस्यों कहोरे, मेरी मत बौरी मैं राम बिसार्यो, किन बिद रैन रहोरे, बाप साब का करे लड़ाई, माया सद मतवारी, बड़े पाई के जब संग होती तब हूँ नाहे प्यारी, कहत कबीर पंच को चगरा चगरत जन्म गवाया, झूठी माया सब जग बांधिया। कबीर जी कहंदन, मैं राम रमत

गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह जी इस शब्द विच बख्शिश कर रहे हैं ऐ मनुख बिना सिमरन दे होर जितने भी कर्म कांड हैं दुनिया दे कर्म हैं उन दान जप तप इन्हां नूं फल नहीं लगन वाले कहो नानक एह तत विचारा जपा सिर जप की है प्रभु सिमरन है तपा सिर तप की है आख्या प्रभु दा सिमरन है कर्मन सिर कर्म केड़ा कर्म है हर को नाम जप निर्मल कर्म प्रभु सिमरन तो बिना तेरा छुटकारा नहीं हो प्रभु सिमरन तो बिना जितने भी होर तेरे कर्म हन ओ जीरो हन ते जीरो जितनिया मर्जी है लाई जाइए उना दी कोई कीमत नहीं होंदी जदों तू नाम दा एका लावेगा ता ओ जीरो दस बोलेगी सौ बोलेगी हजार बोलेगी फिर तेरी मेहनत है जितना सिमरन करी जावेगा तेरे पुन वधदे जानगे तेरा जीवन उच्चा सुच्चा होंदा जाएगा इसलिए गुरु अर्जुन देव महाराज कहंदे ने मैं सारिया धर्मां दा तत तुहानू दस रहा जितने भी इस धरती ते धर्म शास्त्र हन उना दा तत मैं तुहानू दस रहा हां कि बिना सिमरन दे बिना भगवान दे भजन दे छुटकारा नहीं हो सकता इसलिए कहो नानक ए तत विचारा।

छोड़ चले अंत तक भजदा रह जाए मनुख होर कठी कर लवान होर कितों मिल जांदी पर पता उदों लगदा जदों अंत समा आ जांदा चल भाई फिर छोड़ चलिया ता फिर पछताना जदों सब कुछ छोड़ना पै जांदा फिर पछतावा लगदा ओ मेरे मन तू जेड़ा धन इकट्ठा करना सी ओ तो कीता ही नहीं तेरे अखां मीटन दी देर सी एक छिन विच सब कुछ पराया हो गया बल्कि घर वाले भी कहन लग जांदे हन भई इनू हुण इस मकान तो बाहर कढ़ो किते बोई ना पै जावे उच्चारण करो श्री आद घड़ी को नहीं राखे घर ते देत निकाल जिड़ा रात दिन परमदा रिया माया कठी करदा रिया पदार्थ कठे करदा रिया ते रिजल्ट की निकलिया अख फुरत दे विच सब कुछ पराया हो गया संसार दी रो रीति ऐसी इथे निर्धन नूं कोई आदर नहीं पर निर्धन ओ है जिड़ा परमेश्वर दा सिमरन नहीं करदा उचारण करो श्री संसार दी और निरंकार दी रीति विच फर्क है संसारियां विच माया तारी नूं थोड़ा जिहा मान मिल जांदा है जितने तक किसे दी लोड़ पूरी करदा है लोड़ पूरी हो गई गल मुक गई पर सिमरन वाले दा एथे भी मान होंदा है ते दरगाह विच भी मान होंदा है इस संसार दी क्या रो रीति है कबीर जी कहंदे ने निर्धन आदर कोई न दे लाख जतन करे ओ चित ना धरे जो निर्धन सरदन पै जाए आगे बैठा पीठ फिराए जो निर्धन सरधन कह जाए आगे बैठा पीठ फिराए जो सरधन निर्धन कह जाए दिया आदर लिया बुलाए ये संसार दी रीति निर्धन सरधन कोल चला जावे तां वो पीठ कर लैंदा भई कोई सवाल ही ना पा देवे किते पर किते सरधन आ जावे निर्धन दे घर वो आदर नाल बठाउंदा है आदर करदा है सत्कार करदा है पर हजूर बाणी विच कहंदे नु भाई ये तैनू भुलेखा ही है निर्धन सरधन दोनों पाई एक अकाल पुरख वाहिगुरु राम दी अंश होण करके असी सारे ही भरावां उहदा परिवार हां की हो गया जे अज तेरे पास चार कौड़ियां हन किसी होर पास नहीं ते जे तू उना कौडिया दे नाल उस माया दे नाल किसे दी पूर्ति नहीं कीती किसे दा भला नहीं कीता तो तेरी माया किस काम है उचारण करो श्री वाहिगुरु तू सती पदार्थ सकी जाना है तेरा गुवाड़ी मुंह तक रहा भुखा बैठा है तो तेरे पदार्थ शके नू की किया जावे उचारण करो श्री वाहिगुरु जे तू किसे दी लोड़ नहीं पूरी कीती किसे दे कम नहीं आया तो तेरे तने होण दा भी कोई फायदा नहीं निर्धन सरधन दोनों भाई अकाल पुरख वाहिगुरु दी अंश होण करके निर्धन ते

जे सिमरन नहीं करता तां ओदे वर्गा कोई निर्धन ओदे वर्गा कोई कंगाल नहीं है, जे नहीं जपदा श्री वाहिगुरु। कहत कबीर निर्धन है सोई जां के हिरदे नाम ना होई, ओदे वर्गा कोई कंगाल नहीं। महापुरखां दा बचन चेते आया, बाबा ईश्वर सिंह जी कलेरा वाले कानपुर पहुंचे, बड़े तकड़े सरदार नाल 15-20 होर भी उसके करंदे, ते आके महापुरखां दे पास बड़ियां तारीफां करन लगे, महाराज इतना धन दौलत है इसके पास गिनती नहीं, पता नहीं, जगह जगीरां दा अंत नहीं। कई मीलां चल रही हैं, राज दरबार विच भी बड़ा मान सत्कार है, ते महापुरख पुछन लगे, क्यों भाई नितनेम की कर दें, नितनेम की कर दें, क्योंकि महापुरख दा काम है। किसी ने पूछा तेरा कारोबार कितना है, किसी ने पूछा तेरा परिवार कितना है, किसी ने पूछा तेरा घर बार कितना है, पर रब दे प्यारे पूछते हैं तेरा ईश्वर दे चरणा नाल प्यार कितना है। महापुरख कहन लगे, नितनेम की करदे भाई गुरमुखा, जे एडियां बरकतां वाहिगुरु ने तैनू दित्तियां हन ते नितनेम की करदा। कहंदे जी नितनेम तो मैं नहीं करदा। ता महापुरख जो बेपरवाह सदा रंग हर के, उन्हां नू किदी परवाह है, उन्हां ने तो कुछ अपनी कमाई विचों जग्यासू नू देना हुंदा, कोई लेना थोड़ा, ये तो ओ थापड़े देंदे हन जिन्हां ने कुछ लेना हुंदा, भई आया कुछ ना कुछ तो दे ही मरेगा। नहीं, महापुरख अपनी कमाई विचों किनका दे के जग्यासु दी आत्मा नू भाग ला देंदा। महापुरख कहन लगे, नितनेम की करदा है, कि जी नितनेम तो मैं कोई नहीं करदा। महापुरख कहन लगे, मैनू तो तेरे वर्गा कोई कंगाल नहीं नजर आ रहा, तेरे वर्गा कोई कंगाल नहीं, क्योंकि मैनू तरस आ रहा है तेरे ते, कि इतना कुछ वाहिगुरु ने दिता है ते नितनेम कोई नहीं, शुकराना कोई नहीं, ये पदार्थ दुख रूप हो जाएंगे। जिन्हां ने सब कुछ पाके निरंकार दे निर्मल भाव विच जीवन नहीं बतीत कीता, वो सदा दुखी रहे हन। इसलिए महाराज सच्चे पातशाह बाणी दे बोहित शहीदां दे सिरताज गुरु अर्जन देव महाराज कहंदे हन, मैं तुहानू तत दस रहा सारे धर्म ग्रंथां दा, कहो नानक इह तत विचारा बिन हर भजन नहीं छुटकारा, बिना जपन दे तेरा भला।

राग गौड़ी दीप की विच ऋषभ कोमल मध्यम तीवर अते बाकी सुर शुद्ध लगते हैं। इस ते आरोह विच ऋषभ सुर वर्जित है। इस ते जाति शाड़व संपूर्ण वादी षड़ज संवादी पंचम अते समा रात दा पहला पैर है। इस राग विच तुम गाव हो मेरे निर्भौ का सोहिला शब्द दा कीर्तन कर रहे हन भाई अवतार सिंह।

ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं मरता, नाम रहो सब। माता जी चले गए, पिताजी चले गए, बाबा ही रहते। शस्त्र विद्या सखण लग पे, गुरबाणी की विद्या सखण लग पे। वेले बह के मैं रोटियां नहीं पाड़नी, होर भी कई कुछ।

बड़े पतवंते कवि जिन्होंने साहब गरीब नवाज गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की पावन चरणा अंदर बिने की सतगुरु जिन्हां गल्लां आप जी ने कहे हैं जितने वचन महाराज जी वो सब सच हुए ने पर गरीब नवाज सचे पातशाह आप समय नूं जानन हार हो समय दी ठीक समय अनुसार पहचान करन वाले सतगुरु जी आप जी ने कई दफा किया भाई पंथ ते बड़ा बिखड़ा समा आउना पंथ ते बड़ा बिखड़ा समा आउना पर पंथ दी अगवाई करन वाला साहिब गरीब नवाज गुरु गोबिंद सिंह महाराज आप तो बगैर कौन है। तो गरीब नवाज साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सचे पातशाह नूं कवि ने हाथ जोड़ जोड़ के बेनती की साहिब सचे पातशाह महाराज पंथ की राखो ताकि ग्रंथ की मानता रह जाए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जिन्हों अजे गुरता गद्दी नहीं सी बख्शी गरीब नवाज सचे पातशाह जी चरणा च जदों सिखां ने बेनती की महाराज पंथ की इज्जत पत आबरू आप जी ने बचाई है ते पंथ नूं कुछ ऐसे नियम दिओ जिस दे नाल इन्हां दी सारी रहिंदी दुनिया तक इन्हां दी रही जावे। ते साहिब गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज ने सिखां नूं एक वचन कहा सी श्री आनंदपुर साहिब की धरती दे उपर बैठे हां कि पंथ जिन्ना चिर शब्द ते लड़ लगा रहेगा अकाल पुरख की पूजा विच लगा रहेगा उन्ना चिर एक कुराहे नहीं पै सकता जिन्हें अकाल पुरख की जदों इसने पूजा छड़ दिती ना ये भटक जाएगा कुराहे पै जाएगा। ते गरीब नवाज सचे पातशाह जी दियां ओ गल्लां अते बचन जड़े हैं श्री अबचल नगर हजूर साहब विखे गरीब नवाज सचे पातशाह ने भाई प्रहलाद ते भाई नंद लाल जी की समस्त पेश किते। गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज उस समय का वातावरण जो रहतनामे अंदर लिखिया है गरीब नवाज वर्णन करते हैं।

पहला रूप साडा ए है जिहड़ा तिना गुणा तो परे है, रजो तमो सतो इन्हां तिना गुणों तो परे है। ये जिवें सारी बनस्पति दे अंदर अग है ना, किसे भी दरख्त नूं छांग के वेख लो, भावें ओ अंब दा होवे, भावें पिकर दा होवे, भावें दरख्त निम दा है, भावें टाली दा है, अग सारिआं दे अंदर है। झट ही सारिआं नूं अग फड़ लैगी क्योंकि बनस्पति दे अंदर अग है। ते सारे दुद्धां नूं इकट्ठियां कर लो, भावें ओ घा दा दुद्ध होवे, ते भावें मझ दा होवे, गां दा होवे, बकरी दा होवे, किसे दा भी दुद्ध होवे, उस दे अंदर घिओ है। जिवें दुद्ध अंदर घिओ ते बनस्पति दे अंदर अग है। घट घट व्यापरिया परमात्मा वाहिगुरु सचे पातशाह

मैं तेनू एक होर बात कहना, जिन्ने अखर ने ए मेरे रोम हन, शरीर दे जितने रोम ने ना, साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज सचे पातशाह ने कहा गुरु ग्रंथ साहिब विच आए हुए अखर ए मेरे रोम ने, ते जे एक भी अखर उरां परां हो जाए समझो मेरा रोम टुट जाएगा, समझो रोमां दी बेदबी हो जाएगी। ते गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की बाणी पढ़न लगे, असी विचार नहीं करते कितनियां लगा मात्रा अगे पिछे हो जांदियां ने, किन्नी नरादरी हुंदी, कोई पवित्रता नहीं। मैले हथ जड़े हन गुरु ग्रंथ साहिब दे अंगां नूं ला दिंदे आ, समझो गुरु गोबिंद सिंह महाराज सचे पातशाह जी दे पवित्र चेहरे नूं साडा मैला हथ लग गया। इस करके बड़ी पवित्रता दे नाल गुरु के सिखो, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज नूं गुरु मानो। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज नूं हाजिर गुरु मनोगे ते साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे दर्शन इसे विचों होणगे, दस पातशाहियां दे दर्शन होणगे। भाई नंद लाल जिन्हां लगा मात्रा ते अखर ने ए मेरे रोम ने बड़े पवित्र हिरदे नाल पढ़ने, बड़ी सोच विचार करके पढ़ने, किते अंगां दी बेदबी ना हो जाए, किते रोम जड़े हन टुट ना जान साहिब सचे पातशाह महाराज दे। इस करके बड़े अदब नाल गुरु का सिख गुरु की बाणी पढ़े, गुरु ग्रंथ साहिब नूं मत्था टेके हाजरा गुरु मने। अगले वचन साहिब सचे पातशाह जी ने कहे।

साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे चरणा च मत्था टेकिया, पंज पैसे श्री फल गरीब नवाज ने परकर्मा कीतिया ते साहिब सचे पातशाह महाराज आसन ते विराजमान हो गए। वेखद्या वेखद्या सिख बैराग अंदर ने बैराग दा समा बनिया होया, ए विछोड़ा सहया ना जाए। भाई दया सिंह आए चरण पकड़े साहिब जी दे ते चरण हाथ विच ना आए ते वैराग दे अंदर आंसू गिर पए। महाराज ये कड़ा रूप है? भाई दया सिंह ये जड़ा तू वेखना ये साडा वास्तव स्वरूप नहीं, वास्तव स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज अंदर समा गया। इस करके साडे तैनू चरण नजर आ रहे ने, हथ च नहीं आए तेरे च, गुरु ग्रंथ साहिब दे चरणी लग। उस तों बाद भाई दया सिंह जी ने उठ के मथा श्री गुरु ग्रंथ साहिब नूं टेकिया, सारी सिख संगत ने गुरु ग्रंथ साहिब नूं मथा टेकिया। वेखद्या वेखद्या साहिब जी ज्योति ज्योत समा गए। गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज ने ए वाक कहे सन सर्व सिखां दे अंदर, भई सब सिखण को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की देह, जो प्रभ को मिल बोच है खोज शब्द मैं ले। शब्द गुरु मनदिया गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज ने गुरियाई अपने हथी दिती ते नमस्कार करके ज्योति ज्योत समा गए। उस समय का वातावरण एहो जिहा सी, सारी सिख संगत दे अंदर वैराग दा शब्द पढ़िया गया,

अगली जो पंक्ति है ना बहुत जरूरी है। एक गुरसिख के कर्तव्य लई है, पूर्ण प्रेम प्रतीत सजय व्रत घोर मड़ी मट भूल न माने। आओ सारे पढ़िए जी।

ऐसी कृपा मुहे करो, एक साखी है सुकेत मंडी दा राजा आया, कह लगा दसम पातशाह धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी नो मेरे ते कृपा करो। सामने एक सिख सी जो घोड़िया की लिद हटा के तबेले चो निकलिया सी, वो कवि भी सी, 52 कविया विचों। महाराज कहन लगे राजे नू तेनू ओदे वर्गा बना दिए। राजा कंबिया, कहन लगा महाराज तुसी कृपा करन लगे हो कि कहर करन लगे हो? महाराज ने धन्ना सिंह नू आवाज मारी, भाई धन्ना सिंह जी दर्शन दियो, आओ मेरे कोल। आ गए, कहन लगे भाई धन्ना सिंह जी कुछ मंग लो। धन्ना सिंह कहन लगा तुसी कृपा दे सागर हो, अगे कृपा कीती होर कृपा करो। महाराज कहन लगे तेनू ऐसे राजे वर्गा बना दिए। वो भी कहन लगे तुसी कृपा करन लगे हो कि कहर करन लगे हो? इहदे वर्ग। महाराज कहन लगे राजन तू इहदे वर्गा नहीं बनना चाहुंदा, इह तेरे वर्गा नहीं बनना चाहुंदा, है दोनों कहिंदे भी कृपा कर। असल दात उहदा नाम है, इह उहनूं दिंदा जिहदे ते उह कृपा कर देवे। इस शब्द विच भी इह मंग मंगी है, ऐसी कृपा मोहे करो तेरे बख्शिया दे चरण होण ते मेरा मथा लग जाए, सा संगत दी चरण धूड़ प्राप्त होए। ऐसी मंग इस शब्द विच